यार, और हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.rturdu.com। अपना बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए और खुश रखिए। अल्लाह हाफिज़।

0: ये खबरें सदाए तुर्किये की उर्दू सर्विस से पेश की जा रही हैं।
1: अमरीका ईरान कशीदगी के दोबारा शिद्दत इख्तियार करने और मशरिक़ वस्ती में जहाज़ों पर हमलों के बायस सिक्योरिटी खदशात में इजाफे के बाद गुज़श्ता रोज़ आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों की तादाद गुज़श्ता 5 हफ्तों की कम तरीन सतह पर पहुँच गई है। केपलर बहरी ट्रैफिक के आदाद व शुमार से ज़ाहिर होता है कि जहाज़ों की निगरानी के आदाद व शुमार के मुताबिक इतवार के रोज़ सिर्फ 6 जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ से गुजरे हैं। आबनाए हुर्मुज़ से निकलने वाले जहाज़ों में ह्यूमैनिटी नामी

यानी शाहिदीन ने बताया कि स्टेज के करीब एक सर्किट ब्रेकर से धुआं निकलने के बाद बिजली चली गई और एक धमाका हुआ। फायर फाइटर्स की जानब से आग पर काबू पाने से पहले शदीद धुआं तेजी से फैलने की वजह से कई मुतासरीन ऐसे टॉयलेट्स की तरफ भागे जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। इसके साथ ही सदाए तुर्की से उर्दू में खबरें ख़त्म हुई।

और अब नेकी के जदीद और मुनज़्ज़म हीरुओं में से एक यूसुफ ज़िया पाशा हैं। 1863 में उन्होंने अपने रुफका गाजी अहमद मुख्तार पाशा और वेदेनेली तोफीक

मोहम्मद फातेह का अदल, बस्मे आलम की शफकत, यूसुफ ज़िया पाशा का विजन और वो बेशुमार नाम जो सफहात में सिमट नहीं सकते, ये सब जानते थे कि दौलत फ़ानी है और नेकी बाकी रहने वाली। उन्होंने दौलत को मकसद नहीं बल्कि जन्नत और दिलों तक पहुंचाने का वसीला बनाया। अपने कायम करदा औकाफ के दरवाज़ों पर ताले नहीं बल्कि खुश आमदेद की तख्तियाँ आवीज़ा की। आज जब हम इन कदीम इमारतों, पुराने चश्मों और तारीखी दरसगाहों के पास से गुजरते हैं तो दर हकीकत हम सिर्फ पत्थरों को नहीं बल्कि इन अजीम रूहों की वसीयत को सलाम कर रहे होते हैं। वक्त एक ऐसा चिराग है जो माजी को हाल से और हाल को मुस्तकबिल से जोड़ता है और ये चिराग इस वक्त तक रोशन रहेगा जब तक इंसान दूसरे इंसानों के दर्द को अपना दर्द समझता रहेगा। वक्फी निज़ाम ने निजी मलकियत की खुदगर्जी को तोड़कर समाजी यकजहती को ज़िंदगी का अंदाज बनाया। इस तहजीब में कोई शख्स अपनी मलकियत का मतलब मालिक नहीं था, इसमें पड़ोसी, मुसाफिर, परिंदे और आने वाली नस्लों का भी हक शामिल था। आज जिन इदारों को हम गैर सरकारी तंजीमें कहते हैं वो दरअसल इसी अजीम दरख्त की मौजूदा शाखें हैं। वक्फा में यह पैगाम देता है कि इंसान के बड़ेपन की पैमाइश इसके अपने ऊपर खर्च करदा से नहीं, दूसरों के लिए वक्फ करदा से होती है। वक्फ मौत की सर्दी को नेकी की हरारत से शिकस्त देने का निज़ाम है। अगर किसी इंसान का नाम सदियों बाद भी किसी तालिब इलम के वजीफे, किसी मरीज की दवा या किसी सड़क के पत्थर में जिंदा हो तो वो हकीकत में कभी मरा ही नहीं। वक्फ फानी दुनिया की मलकियत को अब्दियत की सरजमीन तक पहुंचाने का नाम है। अब्दी नेकी के इन मामारों ने अपने पीछे सिर्फ इमारतें नहीं बल्कि एक हयात बख्श सकाफत छोड़ी। वो जानते थे कि माल के असल हकदार सिर्फ हम नहीं बल्कि पूरी इंसानियत है। अगले हिस्से में हम इस शफकत और हमदर्दी के जाल के सबसे बाबरकत मराकज़ की तरफ चलेंगे जिन्हें अवामी लंगर खाने कहा जाता था। वो जगहें जहाँ दस्तरखान सब के लिए खुले होते थे और कोई खुद को तन्हा महसूस नहीं करता था। तब तक नेकी के रास्ते और शफकत के नक्शे कदम को तआक्कुब करते रहिए। एक हाथ बढ़ता है, एक ज़िंदगी बदल जाती है और तब कहानी मुकम्मल होती है। देने वाले हाथ की कहानी में अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात की उम्मीद के साथ अपनी मेज़बान मिसबा शाहीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। देने वाले हाथ की कहानी।